0: अस्तु
1: वस्तु
0: वस्तु फ्रॉम ड्राइवर्स कंपनी व्हेयर 30 मिनट ईटीए ही सेइंग दैट दे गोना हैव वन ऑफ देयर मेंटेनेंस टेक्स रिस्पॉन्ड हियर अटेम्प्ट टू जंप स्टार्ट द बैटरी. If not, they also have a tow truck right behind them, which is going to take the load and move the tractor out the way. Okay, 30 minutes ETA.
1: Receive.
0: So just keep our tow response.